वो बहुनो गे या ए या मई ए आई ए या के एक नाका एको मो महलो को ए हन आई ए भाई कहबा ए या नो कौकु ओ कले ओ बहुनो गे या